सैकसरी फिरूं, छोरा को मुख हेरी पितृ ऋण ता छुटने सा मेरो बारू। यस्तो धेर बिलाप गरेर दुखी भाई रुन्ती रानी अनि सम्झाई सब रानीलाई सब बात उठे ती राजा पनि। पहुँची आश्रममा वशिष्ठ मुनिका संगमा सुझाए तहाँ हे सर्वज्ञ गुरु।

0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति के लानु छैन नारायण।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून साहब श्रृंखली सुनसार सुदामा की नारी करच दिन भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई विनती कर चिंता भी डरले गुरु देवता राजा और पुन भला मान सका निदान खाली हर बन कन कहीं ज्योति समना देव के ही सौगर मन देव चंगा कर मदन चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुठ गए तम्बू जमा कर दी सही तम्बू बोली गए प्रभु पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगमग करने मन चित्त हरने।

आकाश मार गरी कुजे रान मारो रे जिया समा सीता जी कनगे की भाई जाना फेरा पा क्षमा पुण्य कलम।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

आजुरा को ब्याची सावनी आई राई चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की नहीं राईले यो जीवन ऐसा ही शुक्य का थाई ना यो घर को फिर राईले ओरी ओ

घर घरी खाऊ कि माता भरी जाऊ कि कस्तो रे कर्म चेली को नेपाले कैया पारी घर मया कस्तो कर्म चेली को।

नमस्कार रेडियो सैलम समुदाय के फिर बैठे भी थोपलो साथ में गायल बाट मद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम संबत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 9 तारीख आषाढ़ 25 गते बीवार नवमी तिथि दुई ये घड़ी 26 पल मात्र अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी।

गा सहिता वायु सरी हुन गया हनुमन्त सहिता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन फेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा।

मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ धरौ तिस्म सान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे